0: गुड न्युज एफएम 105.1
1: विश्वास सुनाइबाट आउँछ गुड न्युज एफएम रेडियो 105.1 मेगाहर्ज।

0: Good News FM 105.1 MHz.
1: अब प्रस्तुत हुँदैछ कार्यक्रम आत्मिक यात्रा।